तही प्रकाश हमारा पहो, पटना शहर बिखे पौलयो, तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सहबे कमाल, जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती ते साहिब जी का प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण सा जिहड़ा अंबाले दे नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहिंदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछा, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो। कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां इस दुनिया दा मालक, वो अज पटने की धरती ते उसने आना किया है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनु पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नु मिलना है। बंदगी तो आपां सारे करदे हां, पर बंदगी एहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा है ना ही दूर। जो एहो जी बख्शिश हो जाए, पीर भीखण साहिब कहिंदे ने तीन महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोकी यात्रा करया करदे सन, तुर पे तुरे जा रहे हैं उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउन दे। जो उथे पहुंचे दर्शना की इजाजत मंगी ते नाल कहंदे ने दो कुजियां विच परखण लई भी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हाथ रखना किया। कह मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे, ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु। कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार दे भले लई दोस्त दोखियन पकर पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां दा खात्मा कीता ते बाए गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार, साड़ी रखिया साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज रखी, भावे अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे, दीन आख दिन जिदा कोई आसरा ना हो, साहिब नितानिया का तान आए ना जाई थिर सदा गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साडे लई साडे धर्म दे लई
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।

सुनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी स्वर, जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन, स्वर्ग

जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले होर केते तुद नो गावन से मैं चित न आवन

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया।

शैल पत्थर मह जंतु उपाए, ताका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधु जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया।

सब त्या वह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर त्या वो संतोह जी सब

पढ़ै बहुसिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता।

को जी तू निश्चल करता सोई तुदे आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सोई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू करता सच्यार मैं डासाई जो तो पावै सोई थीसी जो तू देह सोई हो पाई रहाउ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लाधा मनमुख गवाया तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया।

तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब हुए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला।

तह डूबियले। मन एक न चेत समूढ़ मना, हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगदा जन्म पहया। प्रणवत नानक तिन की सरणा,

जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं, कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण हुए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो।

सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिए सब बैरन को आसंगरिए पूरन हुए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर

आरी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ यो करे हो रच्छा, राख ले हो मुहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंदुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए

आकार है ताहि हमारा जवन काल सब जगत बनायु देव दैत जक्षण उपजायु आदंते कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब उदकर्क करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर

अर्ध दुष्ट दुख ते रहा, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैलिहु उबारी, सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे, तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।

सत्संग जी। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वास भोरी पाछ दसवीं प्रचा भगवती समर कहे गुरु नानक लई पिया है। रंगत गुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याग सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है कारण उन्हें दया बैठा है। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सब थाई हुए सहाय दसा पातशी के पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठदार दत्यांतर के खालसा। बोलो जी वाहेगुरु। पीवन महाराज आप जी के पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ति हटियां जपियां तपियां इन्हें नाम जपया मन छकिया देख चलाई ते वाहि देख डिड कीता तेना प्यारे सच्चारे की कमाई दा ध्यान करके। बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंघा सिंगणियां धर्म हे सही दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइया चरखियां दे चढ़े आ रहे नजर आए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सी किसी तरीके सत्संग वाहे तिना की कमाई दा ध्यान करके। बोलो जी वाहेगुरु। पंजा तख्तां पर गुरु आ रहे दा ध्यान करके। बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चेता है चित आवन का सद का सब सको है। जहां जहां गुरु खालसा साहब का चरियात देख देख की फतेह बिरद की बैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाल ली। बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान शाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नावदान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म क्या जयकार। बोलो जी वाहेगुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पद के राखे आप वाहेगुरु। गुरु गरीब नवाज पंथ सदा सहाय दता जियो गुरुद्वारा निकाणा साहेब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हों तो आप जे पंथ में छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन दीदार तुझे आत्मा दादा अपने खालसा जी ने बख्शो। ये न्योटिया की ओट गुरु ने आसरिया आसरे गुरु धन धन गुरु ने दता जियो दोए कर जोड़ करो अरदास भावे ताने रास। हे गीवनवास जी आप जी के चरण कामना दरदास पंजाब ने बख्शिश की है आपके चरण पितर गुरबाणी सुखमनी साहब संपूर्ण पाठ दिता है। इस वे संध्या समा जान के आपके चरण शोधदार रह रास साहब के पाठ किधर कृपा करो भूइया भुला चुका माफी बख्शो। पढ़ी हुई बाणी शोध के सच खंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगतं हिरदे निशान की कृपालता करो जी। अगो तो शोध के पितर बाणी प्यारी बल बुद्धि बख्शिश करो भी महाराज जी इस खुशी आप दी बख्शियां दातों विचों पितर कड़ाप चाह दी देगा तैयार के हादन दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संग जी रखना लायक हो जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दता दुखा कलेचा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी रार बख्शिश करो आप जी बख्शिया दाता चो लंगर की टुट सवारियां प्रबंध करो रार आप चरणा सेवा कर रहे सारे राजी संघा सिंगड़िया तंदुरुस्ती बख्शो चाटिकला बख्शो और सदा ही इसे तरह अपने चरणा सेवा दी भावना मकरी पालता करो भावना दास बख्शिश करो जी। गुरु गरीब नवाज दूर दराडे ग्रांच बैठी नव कृता की शर्म कर रही है सारी संगतें शाह जी पुराने चलो घड़ियां लिख लो सारा अपनी कृपा जी संगत बख्शन सिखा आपने जाना धनबाद करते शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु कर गुरु घर सेवा सिंह दर संगत माया पेटा कर चरना प्रवान करो बच्चे कमाइया सफल करो कार्यवाद बदता सात संगत शुभकामना पूरिया करो जी गुरु साहब करो दार अमृत वेले तो लैके दर चाहिए सात संगत जी दर प्रवान करो घड़िया खिलाओ संगत दर से सिर फिर पेटा प्रवान शुभकामना पूरी करो जी विमलाय कृपा करो सेवा प्रवान करो भुला चुका माही बख्शो पेत्र हुक्म नवे बच्चे ने प्रण अज शाम की दराज हमता वासी आगा बख्शो रहते कार सवार के चरण दराज बनाओ सही प्यारे मेरे दिन आपका नाम चतावा नानक नाम चढ़ी करा तेरे भावे। वाहिगुरु जी का खालसा

सुनहार क्षत्रिया काल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

कोई ऐसा उदाहरण है? गुरबाणी दे विच ही सतगुरु ने जवाब दे दिता कि भाई साची प्रीत हम तुमस्यो जोरी, तुमस्यो जोर अवर संगतोरी। पहला सौद की सी केवल ते केवल ए अरदास मालका किते प्रकार न टूटो प्रीत दास तेरे की निर्मल रीत। साची प्रीत ना टूटे प्यारे जुग जुग रही समाए। जी किसी नो पूछिए कि भाई बाबा रविदास जी महाराज जिस वेले होए ने उस वेले कौन अमीर सी, कौन ताकतवर सी, शायद भुल जाइए, पर जिन्हां ने उस मालक प्रभु दे नाल सच्ची प्रीत पाई ओ सदा लई अमर हो गए ने। जिहड़ा भी उन्हां दी बाणी दे नाल प्यार करदा है, जपदा है, सतगुर पाछे कहिंदे ने कि भाई ए प्यार ए प्रीति सदा लई अमर रहिंदी है। हर जुग जुग भगत उपाया फैज रखदा आया, राम राजे हर नाख सदुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया अहंकारिया, निंद का पिठ दे नाम देव मुखलाया, नामे प्रीत नारायण लागी। अगला शब्द साची प्रीत हम तुमस्यो जोरी, तुमस्यो जोर और संग।

कितै प्रकार तोटो प्रीत दास तेरी की निर्मल रीत। राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। साची प्रीत ना टूटे प्यारे जुग जुग रहे समाये। साची प्रीत हम तुमसे जोरी तुमसे जोर अवर संतुरी मालक जी। संसार दी प्रीत प्यार केवल ते केवल एक सीमा है। मनुख कई बारी अपने शरीर दे नाल भी मौत तोड़ देता है क्योंकि जो तक इन्हें साथ देना है उदों तक इहदे नाल प्यार है। नहीं तो कई बारी मनुख अपने शरीर तो ही अक जाता है। पर सतगुरु पातशाह कहिंदे ने गल चेते रखी जे उस मालक प्रभु दे नाल प्यार पाया है नामे प्रीत नारायण लागे सहज सपाए पयो बैरागे। नाम देव नारायण पाया गुरु भेटत अलख लखाया। जिन्हां ने फिर उस मालक दे नाल प्यार पाया है साची प्रीत ना टूटी प्यारे जुग जुग रही समाए। इन्हीं सेवा प्रवान करनी हुई भुलां चुका दी खिमा करनी आओ अगले प्रोग्राम आप जी ने सरवण कराने लगे सिख पंथ के विद्वान सत्कारयोग ज्ञानी गुरमेल सिंह जी दमदमी टकसाल वाले उन्हां पासों अगले प्रोग्राम कथा दे गुरबाणी की चल रही लड़ीवार विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरवण करिए दास फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

प्यार सहता को सतनाम श्री वाहिगुरु। नानक जो तोर मिले, तोर तो पा पहला तो जिन्हां ने मस्तक ते लेख लिखे ने से ओ हुण इस मनुखा जन्म विच आण मिलाए, मेरे सतगुरु ने रहमत कीती है, गुरु दे नाल मिलाप हो गया है। एक तुसी सौखा जिहा बचन पढ़ दिओ तुहानू याद आ जाणा, जिस वेले कथा कीर्तन की समाप्ति होवे ते छे पौड़ियां नानक साहिब जी दीआं गाईआं हुंदीआं ने, उहदे विच बचन आउंदा जे तोर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे। तोर इत्थे भी उही बोल आया है, तोर मिले जिन्हां नूं महाराज कहिंदे तुर तो करम लिखिया होया है, वह मेरे गुरु दे नाल आके मिल जांदे ने। नानक जो तुर मिले सो हर से हुण आण मिलाए, ओ इस मनुखा जन्म दे विच सतगुरां ने अपने नाल मिला लिया।

बस आई चितवनी है। काम धंधे किरत सारे ही ने, पर अंदर चितवनी ओदी है, दूजा नहीं कोई, ओ तो बिना दूजा नहीं है। रोम रोम हर उचरा, वाह जी वाह, आखो सतनाम श्री वाह। लाख जेबा देवो मेरे प्यारे, लखा जवाना बन जांदियां ने एक एक रोम दियां, उस एक एक रोम जीवा दे द्वारे गुरु गुरु दे जाप नूं जपदा है, उच्चर है। खिन खिन रसोई, खिन थोड़े थोड़े समय विच पातशाह जी कहिंदे उहदा जाप जड़ा अजप्पा जाप बन जांदा है। गुरमुख जन्म सकार था निर्मल मल खोई, असल विच इउं दा जड़ा प्यारा है जिन्हों नाम नहीं विसरदा, जिहदे अंदर नाम दी चितवणी है, जिहदियां एक एक रोम करोड़ा करोड़ा लखां लखां जीबा बन गईयां ने, मेरे सच्चे पातशाह जी कहिंदे उह गुरमुख है। उहदा जन्म जड़ा सकार था उह सफल हो गया है, उसे गुरमुख वास्ते कहिंदे ने गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया। उहनूं कहा जांदा है भई जन्म सवार के जदों मात लोक तो जांदा उह सचखंड जा रहा है। गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मल्लिया, गुरमुख भोजन भाओ चाओ अलल्या, गुरमुख सदे जान आवन कल्या। मुख गुरमुख जीदा मुख गुरु वले है, गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी, गुरमुख सच कमावे करनी, उस गुरमुख दी करनी जड़ी कमाई ओ उच्ची हो जांदी है। उदा जन्म जड़ा सफल हो जांदा, निर्मल मल खोई ओ अंदरों निर्मल हो गया है, मल जड़ी है अंदर दी खत्म कर दिती है। ओदे वास्ते बोल है जीहो निर्मल बारहो निर्मल, बारहो ता निर्मल जीहो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही, ओ कूड़ वल्ले नहीं तुरदा अंदरों बारों निर्मल हो जांदा है। नानक जीव दा पुरख त्याया अमरा पद होई, जिन्हें संसार विच रहिंदिआं मनुखा देही अंदर स्वासां दे अंदर चलदिआं उस पुरख पूं जमा रख नरका तो रखण वाले दा सिमरन कीता जाप नूं जपिआ है अमरा पद होई, वो अमर पदवी नूं प्राप्त कर जांदा है। भाव की है, उहदा जमना ते मरना मेरा गुरु कट दिंदा है, यही मेरे गुरु की वड्याई है। नाम दे विच बरकतां ने, शब्द की समाप्ति है, एक मिनट बाकी है, प्यार विच आखो।

तुम ते हो सो आज्ञा तुमरे गत मित तुम ही नानक दास सदा कुर्बानी। पूर्णा जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरका है। गुरु नानक लई ते आए रंगत गुरते अमरदास रामदासे हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस तिठे शब्द जाए तेग बहादुर सिमरिया। कर नौन दयावे धाए सब थाई हो सा दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सब थाई हो सहाय। सब पातशाहियां दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहब जादियां चाली मुक्तियां अठियां जपियां तपियां जरनाम जपिया वट के छकिया देख चलाई ते गवाई देख डट की तातना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी से बोलो जी। जिन्हां सिंघा सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आ रहे ना चराए गुरुद्वारां दी सेवा लई कुर्बानियां कीते धर्म निहारे सुखी के सस्वस सिंघ निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी से बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी अरदास होई सरबत खालसा जी को वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू चिताव चितावन का सदका सर्व सुख होय जहां जा खालसा जी साहब तहत हर शरिया देखते फतेह ब्रत की पाए पंथ की जीत। श्री साहब जी साहे खालसा जी के बोल बल बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहे दान विवेक दान विशाल दान भरोसा दान दाना सरदार नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन शना चुके झंडे बुंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मरने मैं मत उची मत पत कर खाप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ सदा साहे जतार जी श्री ननकाणा साहब ते होर गुरुद्वारा गुरधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दार सेवा सफल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाण्यो के मारन ताण कतार नोटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जीओ दोए कर जोड़ करूं अरदास तुत पावे ता आने रास महाराज जी आप जी के चरणा अरदास बेनती आप जी की महान बख्शिश हुई पावन हजूरी अंदर रात्रि दे दीवान सजाए गए सजे हे दीवाना आरती शब्द कीर्तन चल रही लड़ीवार गुर शब्द दिया विचारा उपरंत ढाडी जथे रहे गुरु जस श्रवण करवाया कृपा करनी महाराज जी बाणी पढ़द्या कीर्तन करद्या विचारा करद्या गुरु का जस गायन करद्या हुईया बेनत भुला बख्श देनिया जी। अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बल उदम बख्शिश करना बाणी दा भाव अजा सुगतां दे हिरदयां तों सौणा अजा सुगतां दी हारी दर प्रवान करनी सभना दियां तर फुल पटावन दर प्रवान करनिया सभना नूं तरह करन नाम दान गुर सिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशां विदेशां विच रख्या बख्शिश करनी महाराज जी बिन संगतां दूर दुराडे पिछे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहियां हन जाप सरवण करदे आप जी दा धन्नवाद करदे आ बेनत मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर दे सेवादार सिंघां वास्ते ऑनलाइन भेटा कीती महाराज जी सारी संगत दी हारी दर प्रवान करनी सभना दी माया सफली करनी किरत कमाईआं वे बरकतां पाउणी श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनी जी आप दर घर दे सेवक बीबी बलवंत कौर समूह परिवार की सेहत तंदुरुस्ती ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ 152 ਟਨ ਨੁਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੁਖਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਗਰੋਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 50 ਟਨ ਨੁਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਸਿਪਰਾ ਕਮਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤ ਨੁਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ
गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की जो प्रभु को मिल पो चाहे खोज शब्द में राज करेगा खालसा आया की रहे ना खुआर हुए सा मिलेंगे बचे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े से उतरे जो शरण

ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर गीता की गलते को है विचार नित नित जियाडे समारे न देखेगा ते मनहाव तेरा दान किमत नाप वै तिस दाते कम शुमार संबत सह लिखे अमल कृपा वतेद देह सजना सिसरिया जो होवे साहब समेल कर कर पहुंचा सदन नित पवन सदन हार सिमरिय नानक सीध आवन राग सम हला पहला श्री कर श्री गुरु श्री उपदेश गुरु गुरु कवि सनेक बाबा जय कर करते की तो शुक्र राख बढ़ाई तो रहा विश्व से कड़िया पहला तिथि बारी माह हुआ सो जो गुरु तन एक नानक करते की किति विश राग तमाश्री महला पहला गगन में थाल रब चंद दीपक बने तारका मनोजन कमोते कोप मदयाल लोपा बुन टबरो करे सगल बन गए फुलंत ज्योति ऐसी आरती होए पवखन्ना तेरी आरती ना दस शब्द वार नंत फेरी रहा सहस तव नयन नयन है तो है को सहस बोलत नानक तोय सहस पद में मिल नानक पद गंध बिन सहस तव गंध जल तुम हो सब में ज्योत ज्योत है सोए तिस दै जानन सब मह चानन होए गुरु साखी जोत प्रकट होए जोत सुभाव गाय स्वार्थी होए हर चन कम मुकरंत लोग मन अंतर न मोहिया प्यासा कृपा जल दिह नानक साह जिनको होए जात तिर नाय वसा राह गुरु पूर्व महला चौथा काम क्रोध नगर बपरे अमर साधु खंडल खंडा है ओर बिलिखत लिखे गुरु पाया मन हर जब मंडल मंडा है कर साधु निदीपन बड़ा है कर डंडा उत्पन्न बड़ा है दखाओ साकत हर रस साधन जानिया तिलंतर हो मैं कंडा है ज्यो ज्यो चल चुबै दुख पाप जम काल सह है सर डंडा है हर जन हर हर नाम सुमानी दुख जन्म मरण पव खंडा है विनाशी प्रभु पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मुस्किन प्रभ तेरे हर राख राख बटवटा है जन नानक नाम दर टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राह गोरी पुर भी मोहल्ला पनवा करो बिनती सुनो मेरे मीता संत टहल की बीला यहा खाट चलो हरला आगे वसन सहेला आओ दिगटै दिन सरै नारी मन गुरमिल काज स्वरि रहा ए हो संसार बिगा संसि मैं तेरे ब्रह्म ज्ञानी जिसै जगा पिया ब एहो दस अकत कथा तन जानी जाको आय से बिहाजो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पाबो शुभ सहजे बहुर न

0: प्रभ कै सिमरन काल पर हरै,
1: प्रभ कै सिमरन दुस्मन डरै,
0: प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै,
1: प्रभ कै सिमरन वंदन जागै,
0: प्रभ कै सिमरन भउ न ब्यापै,
1: प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै,
0: प्रभ का सिमरन साध कै संग,
1: सर्व निदान नानक हर रंग,
0: प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध,
1: प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व,
0: प्रभ कै सिमरन जप

0: प्रभ कै सिमरन कब हो न चूरे,
1: प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी,
0: प्रभ कै सिमरन सहज समानी,
1: प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन,
0: प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन,
1: प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार,
0: सुख प्रभ सिमरन कांत नवार,
1: सिमरह से जन जिनको प्रभ मया,
0: नानक दिन जन सरणी पया,
1: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए,
0: हर सिमरन लग वेद उपाए,
1: हर सिमरन भय

0: मैं उदारी
1: पुनः चन कर नहीं तरह
0: हर को नाम कोट पाप पर हरे
1: गुरमुख नाम जप मन मेरे
0: नानक बाबो सुख कने
1: सृष्टि को।

0: अंधकूप में पतत बिकराल
1: नानक काढ़ ले प्रभ दयाल
0: करतूत पशु की मानस जात
1: लोक बजारा करे दिन रात
0: आहर पेख अंतर।

0: किस ठाकुर को रख मनवाही।
1: यह प्रसाद सुगंध तन लावे है,
0: इसको सिमरत परम गत पावे है।
1: यह प्रसाद बस है सुख मंदर,
0: सहते आए सदा मन अंदर।
1: यह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना,
0: आठ पहर सिमरो तिस रसना।
1: यह प्रसाद रंग रस भोग,
0: नानक सदा त्याई त्यावन जोग।
1: यह प्रसाद पाठ पटंबर हटावे,
0: सहते आकत अवर लुभावे है।
1: यह प्रसाद सुख से सोई जय,
0: मन आठ पहरता का जस गावी जय।
1: यह प्रसाद तुझ सबको मन,
0: मुखता को जस रसन बखाने।
1: यह प्रसाद तेरु रहता धर्म,
0: मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म।
1: रब जी जब तुंदर गह मान पावे,
0: नानक पद से ती कर जावे।
1: यह प्रसाद आरोग गंचन दे,
0: लिव लाव तिस राम सुनेही।
1: यह प्रसाद तेरा ओला रहता,
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत।

0: तेरी पत रहै।
1: गुरु प्रसाद नानक जस कहै,
0: जे प्रसाद सुनै करन नाद,
1: जे प्रसाद पिखै विस्माद,
0: जे प्रसाद बोलै अमृत रसना,
1: जे प्रसाद सुख सहज।

0: के संग नहीं कछ काल
1: दर्शन भेटोत निहाल
0: साध के संग कलुखत हरे
1: साध के संग नरक पर हरे
0: साध के संग यहाँ उहाँ सुहेला
1: साध संग विचरत हर मेला
0: जो इच्छा सुई फल पावे
1: साध के संग न बिरथा जावे
0: पार ब्रह्म साध रिद बसे
1: ज्ञान गुजरे साध सुन
0: साध के संग सुनो हर नाऊ।

0: साधु के संग लग गए प्रभ मीठा,
1: साधु के संग कट कट मीठा,
0: सा संग पै आज्ञाकारी,
1: संगत पई हमारी,
0: साधु के संग मिटे सब रोग,
1: नानक साध पेटे संजोग,
0: साध की महिमा वेद न जान है,
1: सुने ते जा बखे अन्य,
0: साध की उपमा

0: दिन प्रव्याप करे।
1: ब्रह्म ज्ञानी सकल की रीना
0: आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चिन्ह,
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब पर मया,
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया,
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि मृत वर्षी,
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता,
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता,
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,
1: ब्रह्म ज्ञानी

0: ना पार्स
1: मन में प्रीत निरंजन दर्श
0: पार त्रय रूप न पिखे नेत्र
1: साध की टैल संत संग हित
0: करन न सुने गाहू की निंदा
1: सबके जाने आपस को मंदा
0: गुर प्रसाद विखया पर हर
1: मन की वासना मन ते टर
0: इंद्री जित पंच दोख ते रहत
1: नानक कोट मध्य को ऐसा परस
0: वैस न सो जसो परसो प्रसन्न
1: कृष्ण की माया ते हुए पिन
0: कर्म करत हो वै नह कर्म
1: किस वैष्णो का निर्मल धर्म
0: ताहू फल की चय बाच
1: केवल भगत कीर्तन संग राच
0: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
1: सब ऊपर होवत कृपाल
0: आप दृढ़ वृह नाम जपावे
1: नानक वैष्णो परम गत पावे
0: भगवती भगवंत भगत का रंग
1: सगल त्याग दुष्ट का संग
0: मन ते विंच सगला परम
1: कर पूजा सगल पार ब्रह्म
0: साध संग पापा मल खोवे
1: इस भगवती की मत उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नित नीत
1: मंतन अर्प विष्णु परीत
0: हर के चरण हृदय बसावे
1: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे।

0: पात्र को तारे।
1: सर्व रोग गाव गाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम।
1: काहू जुगत कित न पाइये धर्म,
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म।
1: जिसके मन बार ब्रह्म का निवास,
0: जिसका नाम सत राम दास।
1: आत्म राम तिस नदरी आया,
0: दास संतन पाए तिन पाया।

0: तैसा स्वर्ण तैसी उस मट्टी,
1: तैसा अमृत तैसी बिख खाटी,
0: तैसा मान तैसा अवमहान,
1: तैसा रंक तैसा राजान,
0: जो वरदाय साई जोगत,
1: नानक उह पुरख कहिए जीवन मुक्त।

0: महाविद अनक प्रकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी
0: कई कोट आचार व्यवहारी
1: कई कोट पै तीर्थवासी
0: कई कोट बन

0: कई कोट नव तन नाम त्याव है
1: नानंगर देकांत न भाव है
0: कई कोट पहे अभिमानी
1: कई कोट अंधज्ञानी
0: कई कोट कृपण कठोर
1: कई कोट अपेग आत्मन गौर
0: कई कोट पर दर्व को गिर है
1: कई कोट पर दुख न कर
0: कई कोट माया श्रम वाहे
1: कई कोट प्रदेश प्रमाहे
0: जित जित लाभ तित तित लगना
1: नानंगर की जाने
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
2: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प पाए
2: कई कोट पात्र वृक्ष निभाए
0: कई कोट पवन पानी बैसंतर
2: कई कोट देश भू मंडल
0: कई कोट शशियर सूर नक्षत्र
2: कई कोट देव दानवेंद्र
0: सगल सामग्री।

0: राखी
1: नानक रखी प्रभ कह हाथे
0: कई कोट भय बैरागी
1: राम नाम संग तिन लब लागी
0: कई कोट प्रभ को खोजनते
1: पार ब्रह्म लहंते
0: कई कोट दर्शन प्रभ्यास
1: तिनको मिले ओ प्रभ विनाश
0: कई कोट मांगे सत्संग
1: पार ब्रह्म दिन लागा रंग
0: इनको हुए आप सुप्रसन्न।

0: प्रभु की हो तरवाल
1: राजा
0: प्रभु भिखारी नीच का साजा
1: अब कीर्त में आवे
0: प्रभु भला भला कहावे
1: जो प्रभु रखे तेवी रहे
0: प्रसाद नानक सच कहे
1: होए पंथ करे विज्ञान
0: प्रभु मोहन धारी लावे ध्यान
1: तीर्थ स्नान
0: प्रभु सिद्ध साधक ज्ञान
1: प्रभु कीट हाथ पतंग

0: मैया नानक गर्भ गले अष्टपदी।
1: जिसके अंतर राज महान
0: तो नरक पाती होवत स्वान।
1: जो जाने मैं जो बन बंत
0: तो होवत विष्टा का जंत।

0: संत के दुखन ते मुख पवै
1: संतन के दुखन काज जो लवै
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
1: संत के दुखन त्रिग जोन करमाए
0: संतन के दुखन तृष्णा मह जलै
1: संत के दुखन सब को चलै
0: संत के दुखन ते सब जाए
1: संत के दुखन नीच नी जाए
0: संत दुखी का थाव को नाही
1: संत पावे ताव भी गत पाए
0: संत का निंदक महा अतताई
1: संत का निंदक कंटिक न पाई
0: संत का निंदक महा

0: दुख
1: संत का दुखी सदा अपवित
0: संत का दुखी किसा का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लागे
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
2: संत का दुखी सदा भिखारी
1: संत का दुखी जन में मरे
2: संत की दुखना सुखते तरे
1: संत के दुखी को नाही ठाऊ संत का दुखी हद बीच से टूटे
2: संत का दुखी किसे काज न होचे
1: संत के दुखी को ध्यान परमाइए
2: संत का दुखी उजड़ पाइए
1: संत का दुखी अंतर ते

0: दिया।
1: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
0: संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए।
1: संत का दुखी सदा सहकाई है,
0: संत का दुखी न मरे न जाए।
1: संत के दुखी की पूजा न आशा,
0: संत का दुखी उठ चले न आशा।
1: संत का दुख न तृष्ट कोई,
0: ऐसा पावे तैसा कोई होए।
1: पया कीर्तन मिटे कोई,
0: नानक जाने सच्चा सोए।
1: सब काट तिसके ओ करने हार,
0: सदा सदा तिसको नमस्कार।
1: रब की उस्तत करहु दिन रात,
0: सहते आओ सास ग्रात।
1: सब कछु वरतै।

0: कृपा करे।
1: सो सेवक कहो किस ते डरै,
0: ऐसा साथ ऐसा दृष्टाया,
1: अपने कार्य में आप समाया,
0: सुधो सीजिया,
1: गुरु प्रसाद ताचा पूजिया,
0: देखो तो सब कुछ मूल।

0: प्रभु के सेवक दुख बिसारण
1: आपे मेलै कृपाल
0: उनका शब्द जप भए निहाल
1: उनकी सेवा सोई लागे
0: जिसनो कृपा करहै बड़ पागे
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: नानक जिन पुर को उत्तम कर्मान
1: जो कुछ परे सो प्रभु के रंग
0: सदा सदा बसै हर संग
1: सहसो आए होवे सो होए
0: करने हार पछाणे सोए
1: प्रभु का किया जन मीट लगाना
0: जैसा सत्य सदृष्टाना
1: उपजे दस माए समाए
0: वे सुख निदान।

0: के ऊच निर्मल करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोजन निर्मल थिया
1: कह मन गुर की प्रतीत
0: किस जन आवे हर प्रवचीत
1: भगत भगत सुनिए इंद हलोए
0: जाके हृदय एक होए
1: सच करनी सचता की रहत
0: सच हृदय सत मुख कहत
1: साची दृष्ट।

0: नाना चलत करे खिन माही,
1: पूर्य पूर्ण सब ठाए,
0: नाना बिद कर बणत बनाई,
1: अपनी कीमत आपे पाई,
0: सब घट तिसके सब तिसके ठाओ,
1: जब जब जीवे नानक हर नाओ,
0: नाम के तारे सगले जंत,
1: नाम के तारे

0: नाम के तारी पुरिया सब पवन
1: नाम के संग उदरे संसर्वन
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
0: रूप सत जाका सत स्थान
1: पुरख सत केवल प्रधान
0: कर दूत सत सत जाकी बाणी
1: सत पुरख समाए समाणी
0: सत कर्म जाकी रचना सत
1: मूल सत सत उत्पत
0: सत करनी निर्मल निर्मली
1: जिसे बजाए तिसे सब भली
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई
1: विश्वास सत नान गुरते पाई
0: सत बचन साधु उपदेश
1: सत जन जाके हृदय प्रवेश
0: सत निरत बूझे जे कोए
1: नाम जपता की गत होए
0: आप सत किया सब सत
1: अपे जाने अपनी मित गत
0: जिसकी सृष्टि सो करण है।

0: मैं रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक परमो दुख तहते नाशे
1: शब्द माहे ठाण वरताई
0: भया दुख नाठे पाई
1: जन्म मरण के मिटे अंधे से
0: साधु के पूर्ण उपदेशे
1: चुका निर्भव बसे
0: सगल व्याध मन तीख नशे
1: जिसका साथ इन कृपा धारी
0: सा संग जप नाम मुरारी
1: हित भाई चुके ब्रह्म गवन
0: सुन नानक हर हर जस रवन
1: निर्गुण आप सरगुण भी
0: कला तार जिन सगली मोही
1: अपने चर्थ प्रभाप बनाए
0: अपने कीमत आपे पाए
1: हर बिंदु जाना ही कोए
0: कर्म निरंतर एक को सोए।

0: संत जना मिल करो विचार,
1: एक सिमरन नाम आधार,
0: और उपासम मीत विसारो,
2: चरण कमल हृदय उतारो,
0: करण कारण सो प्रभु समरथ,
2: दृढ़ कर कहो नाम और वत,
0: इहु तन संचो हो भगवंत,
2: संतना का निर्मल मंत,
0: एक आसरा कहु मन माहि,
2: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
0: जिस तन को चार कुंट उठता वह,
1: सो तन हर सेवा ते पावे,
0: जिस सुख को नित

0: साहस्रवत में त्यागो,
1: चरण कमल से लागे प्रीत,
0: भगत करूं प्रभु नित नीत,
1: एक कोटि को आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभु सार,
1: प्रभु की दृष्टि मास कोए,
0: हर रस पावे बिरला कोए,
1: जिन चाख्या से जंत ताने,
0: पूरन पुरख नहीं डोलाने,
1: सोख पर प्रेम रस रंग।

0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
1: सर्व विकुंड मुक्त मोक्ष पाए
0: एक निमक हर के गुण गाए
1: अनक राज भोग वढाई
0: हर के नाम की कथा मन पाई
1: वो पूजन

0: जब अकार एहो कछ न दृष्टिता
1: पाप उन तब कहते होता
0: जब तारी अपन सुन समाद
1: तब बैर विरोध के संकमाद
0: जब इसका बरंचे न जापत
1: तब हरख सो कहो किसे बेआपत
0: जब अपन आप पार ब्रह्म
1: तब मोह कहा किस होवत परम
0: अपन खेल आप बरतीजा
1: नानक करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभ केवल धनी
1: तब बंद मुक्त कहो किसको गनी
0: जब एक अर्गम बार
1: तब नरक सुर कहो कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्रभ से सुभाए
1: तब शिव शक्त कहो कित ठाए
0: जब अपे आप अपनी ज्योतर है
1: तब कवन निडर कवन कत डरे
0: अपन चल तो आप करने हार
1: नानक ठाकुर अगम अपार
0: अविनाशी सुख अपने आसन
1: जन्म मरण को कहा बिना
0: जब पूर्ण गता प्रभ सोए
1: अब जम की त्रास कहो किस हुए
0: जब अवगत अगोचर प्रभ एक
1: तब चित्र गुप्त किच पूछत लिखा
0: जब नाग निरंजन गोचर गादे
1: तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे
0: अपन आप आप ही अचजा
1: नानक अपन रूपा पियो पर जा
0: यह निर्मल पुरख पुरख बत होता
1: तह बिन मैल कहो क्या तोता
0: यह निरंजन निरंकार निर्वाण
1: तह कौन को मान कौन अभिमान
0: यह स्वरूप केवल जगदीश
1: तह
0: तह शाल
1: चिदर लगत को कीश
0: जह ज्योत रूप में ज्योत संग समावे
1: तह किसे पूकवन तृप्तावे
0: कर्म करावन करने हार
1: नानक करते का नहीं सुमार
0: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई
1: तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई
0: जह सर्व कला आपे परवीन
1: तह बेद कतेव कहा कुचीन
0: जब अपन आप उद्धार
1: तो सगन अप

0: अपन खेल अब कर देखे,
1: खेल संकुचे तो नानके कह,
0: यह अवगत भगत तह आप,
1: यह पसरै पासार संत प्रताप,
0: दुहु पाका पहतनी,
1: उनकी शोभा उनहु बनी,
0: आप है कौतक करे आनंद चोज,
1: आप है रस भूगन निर्जोग।

0: सरस्वती आप कथै आप सुन नैहार जात सुखावे ता सृष्ट उपाए
1: अपने पाणे ले समाए
0: तुम ते भिन्न नहीं किछ हुए
1: अपन सु

0: उदार
1: अमृत बचन हर के गुण गाओ
0: प्राण तन काय सुहाओ
1: आठ पहर प्रपेखो नेरा
0: मिटे अज्ञान विषय अंधेरा
1: सुन उपदेश हृदय बसाव
0: मन इच्छे नान बल पावो
1: अलत पलत दुइले हो सुवार पूरे गुर की पूरी दिखिया
0: जिस मन बसै तो साज परिखिया
1: मंत्र नाम जपो लिव लाए
0: दर्द मन ते पा जाए
1: सच व्यापार करो व्यापारी
0: तुम्हारी
1: एका टेक रखो मन माही।

0: संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म
1: संत जना सुने सब वचन
0: सर्वव्यापी राम संग्रचन
1: जिन जाता तिसकी ये रहत
2: सत वचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सोई सुख माने
0: कर्ण करावन हर प्रभु जाने
1: अंतर वसै बार पियोई
2: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत
0: इस प्रभु के सगले

0: नानक निभे खेप हमारी
1: प्रति उस्तत करो संत मीत
0: सावधान का गर्जीत
1: सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन

0: लोग चपेंगे।
1: माणव इंद्र गजेंद्र राधव जोड़ तो लोग को राज करेंगे।
0: स्नान गजाद अनेक से अम्बर साज भरेंगे।
1: ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत

0: अग्न उदर में तैसी पार माया
1: माया अग्न सभी को जेही करते खेल छाया
0: जातिस पाना ता जम्या परवार फला पाया
1: जीव छुड़की लगी तृष्णा माया ब्रह्म छाया
0: माया जित हर विसर।

सत्संग जी बोलो जी वाहे गुरु। एक उनका श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाचि पाची दसवीं प्रथम भगवती समर कही गुरु नानक लई त्या फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय से सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कारण उन्हें दया बहता है सब साई हुए सहाय दसवें पाचा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब साई हुए सहाय दसा पाचे ने पवित्र आत्मक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ के घर से बोलो जी वाहे गुरु। श्री भनवाज आप जी दे पांच प्यारी चार साहबजादे चाली मुक्त हठियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपिया मन चकिया दे चलाई ते वाहे दे के ढिड की दर्दना प्यार से प्यार ने कमाई दर्द अंतर की बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंह सिंगणिया धर्म ये सी दिते बंद बंद कटवाए कोपरियां लवाइया चरखड़िया से चढ़े आर न चढ़ाए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सी किसी देखे सरसा सिंह आया ते ना ही कमाई दर्द अंतर की बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तख्त बस गुरुद्वार होंगे अंदर की बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता है जित आवण का सद का सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब का रखा जाए देख देख की फतेह बृद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दान सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुग जुग हटान धर्म क्या जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा का मन नीवा मत उची मत पत के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की गुरुवाज पंथ सदाशाही दता जी गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब से होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हों तो आप जी ने पंथ छोड़िया गया है उन्हें अपने दर्शन की दार से सेवा संभाल दता है अपनी खालसा जी ने बख्शो ये लोटिया की ओर गुरु न्यासद्यासरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ दार जी हो दोए कर जोड़ करो अरदास तुर भावे ताने रास ये की बनवाज जी आपके चरण कामना अरदास में थी आप जी ने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश मान हुए संगतान दर्शन दर देखे निहाल दरदार जी हाथ दरदार जी हो बेहद बाणिया के पाठ ऐस वे रागी सिंह ने आपके चरण जाशा की वाद कीर्तन किए ने छह पुणिया नव साहब के कीर्तन दरदार कृपा करो भूइया भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदन शांति की वादा करो जी अगो तो शोध से पित्र बाणी चाली मर बुद्धि बख्शिश करो महाराज इस खुशी में आप जी दक्षियां दातों में पितर कड़ाप शाह जी देखा तैयार कर दता आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद शाह संगत की रखना लायक हो जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम च बख्शिश करो दता दुख कलेशा रोगों का नाश करो सुखों का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी बख्श करो दता पिता जगत सत्य पातशाही आप जी मक्खियां दाता जागदार कृष्णदार भाई नरेंद्रपाल सिंह बीबी परमिंदर कौर परिवार की तुंत सुख चाट करा वास्ते बेनती कर दिता है सारे परिवार उतार दिता जी बच्चों की पढ़ाई की सफलता वास्ते चाट करा वास्ते और बच्चों के विवाह कार्यों वास्ते सफलता वास्ते कार्यों की सफलता वास्ते बेनती करते हुए परसों रोज अज पित्रकाली तुरकी बाणी के अखंड पाठ साहब ब्रह्म परिवार ने कहा कृपा करो मेरे प्रयास परिवार के सिरते रखो सेवकों की शुभकामना संबंध पूरी करो सेवकों के अज के सारे कार्य विघनता सहार कृपा करो अपने सेवकों आप राजपाल कृपा बख्शिश करो बच्चों गरीब नवाज उच्ची विद्या दाल बख्शो अच्छे जो कार्य ने आप अंक संघ अपने सेवक की आप सहायता बच्चा की वार्ता करो दातिया की लाजत रखो कमाइया सफल करो दता परिवार ने सदा चरण जोड़ गुण प्यार बख्शिश करके उन्होंने शुभकामना वासना पूरी करनिया सदा इसे तरह अपने चरण सेवा की भावना बख्शा की वार्ता करो कृपा करो दरदार जी बख्शिश करो अमृत वेले तो लैके दातिया साफ संगत दर परिवार करो घड़िया लिखे लाओ संगत पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी दारा उन्हें बख्शी दिया परिवार वो लंगर तुर सेवा हुई प्रमाण करनी बख्शिश करो दता आप भी जाना सेवा कर रहे सारे टैरिया सिंह सिंगड़िया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी करा बख्शो और सदा ही इसे तरह अपनी चरण सेवा की भावन बख्शी की पालता करो दता जी कृपा करो सिर्फ कौन खालसा पंथ न एकता दुआ प्यार की बख्शिश करके सच रोज दार बख्शो चाहना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान दुआन फतेह बख्शा की पालता करो जी गुरु जी आज कृपा करो दूर दुराज कारण बैठी लाइफ पिता की श्रवण करी सारी सकता हाजिया प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ
ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰ ਹੀ ਚਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਵਧਾ, ਸਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਵਾਸਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਿਰੰਦ ਕਰਿਆ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈਗੀ ਆਪ ਜਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਈ ਸ਼ੋਣ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਤਰਸੇਮ ਕਰ ਗਰੀਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੰਧ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਮਹਾਰਾਜ, 151 ਡਾਲਰ ਆਪਦੇ ਚੱਲਣਾ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਰ ਸੇਵ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਕਾਰਜ ਵੱਧੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੇਵ ਤੌਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਨੀ, ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਕਾਰਜ ਵੱਧੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਦਾਰ ਦਾਤਾ ਆਪ ਰਾਜ ਰੱਖੋ, ਦਾਰ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਦਾਤੇ ਦੇ ਆਪ ਰਾਜ ਵਰਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਦਾ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਸੰਬੰਧ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਚੰਨਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਚੜ੍ਹਕੜਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਚੜ੍ਹਕੜਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰਿਆ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਮਾਈ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅੱਜ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਕੀ ਦਰਾਜ ਹਮਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੰਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਓ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝਾ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਗੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਦੋ ਤੇਰੇ ਪਾ ਜੋ ਸ਼ਰ

दर्शन देख दी, कैसी अवस्था प्राप्त हो। पहला शब्द कवि भगत नामदेव जी के पावन पवित्र वचन, ते फिर दूजे शब्द भगत जी अपनी अवस्था दर्शा रहे हैं।

हर हर नाम अतोलक पाया, तेरी भगत परि पंडार, समुंद वरोल शरीर हम देखिया, समुंद वरोल शरीर हम देखिया, एक बसत अनूप दिखाई,

5 मिनट का समा बाकी है जी, आओ सारी संगत मिल करके शब्द गायन करिए। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़ता।